0: अल्लाह
1: तेरी बाहों ने मुझे
0: हाँ अल्लाह सुभान अल्लाह
1: तेरे बिना ये घर अधूरा लगता
0: या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह।